0: FM 93.2 MHz
1: स्वदेश टाइम चेक
0: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई और रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0656 53 69 98 55 77 0 61 र 98 55 77 0 53
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 0656 93 440 493 580 र 98 55 26 440
1: It's 9 o'clock अहिले 9 बजेको छ

आजी त्यसै खोली सम्म यति कै धाउँदैन नमानेला त छु साइली खोली झरे माछी जालमा।

0: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीनामा वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी रॉ फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोके को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागी मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागी 9800100 4477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो
1: सुरक्षित भविष्यको लागि जीवन बीमा गरौँ जीवन बीमाका लागि राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी नै रोजौँ न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त एकमात्र जीवन बीमा कम्पनी बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रधान कार्यालय रामसहापथ काठमाडौँ
2: कार्यक्रम संगीत चौतारी

0: नेपालीपन को आभास नेपाली मन को आवाज
1: सुन चुली पहाड़ पहरा सुन भीर पागल एक बेसी सारा सुन
0: स्वदेश FM 93.2 मेगाहर्ट्ज

0: त डरे रिसाएछन् गोलेनन् खै
1: खै यति करलान्दन नगाउने के गर्थे
2: उहाँ बिरालो छ क्या
3: हे के भनम खै हे।

0: हेपिन के मेरो छोरालाई
1: गीता हेप्न पाइन्छ
0: मोटा नि
1: बाडिस के
2: हल्का ग्यास्ट्रिक
0: उज्जा मुर्दार
3: तिमलाई
4: हो हा राम्रो।